ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में तय पाने वाले अपने मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में तेजी से फौजी दस्तों की तैनाती के लिए जरूरी इकदामात करने का फैसला किया है। तीनों ममालिक ने पीर को सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क यमन के हुकूमत मुखालिफ हौसी बागियों के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। बाद में जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में हौसी बागियों का नाम लिए बगैर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मुजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक से फरीकी मुआहदे के मुताबिक अपने मुश्तरका दिफाई वादों पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर पेशरफ्त करेंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि वो सऊदी अरब में तय शुदा फौजी दस्तों और सलाहियतों की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदामात करेंगे और उनकी तेज़ी से तैनाती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामी उन्हें कैद से रिहा करने का मुतालबा करते हुए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हजारों लोग इतवार के रोज सड़कों पर निकल आए, जहां पर खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की बुनियादी ताकत है। इमरान खान को 2022 में इख्तदार से बेदखल कर दिया गया था और अगले ही साल उन्हें बदनवानी और दीगर इल्जामात में जेल भेज दिया गया। उनके हामियों का कहना है कि इन इल्जामात का सबब सियासी था। खान की तीन बहनों को गुज़िश्ता माह अमनियामा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। नेपाली हुकूमत ने चीन के साथ वाक़े अपने सरहदी इलाके में अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक आने वाले सैलाब की तबाही के बाद तलाश और बचाव के कामों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने नागुजीर तलाश और बचाव की कोशिशों के अलावा फौज और पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल कार्रवाइयों को रोकने के फैसले का ऐलान पीर को किया। हुकाम ने कहा कि आफत के 40 दिन बाद जिंदा बच जाने वालों को ढूंढ निकालने का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि अगर नई मालूमात सामने आईं तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू की जाएंगी। 26 अगस्त को आने वाली आफत में नेपाल में 1455 अफराद हलाक और 5200 से ज्यादा लापता हुए। लापता होने वालों में 5 जापानी शहरी शामिल हैं। चीनी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि सरहद की चीन की जानिब 43 अफराद हलाक हुए और 510 से ज्यादा अब भी लापता हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। शुमाली कोरिया के हाथों अगवा शुदा जापानी शहरियों के अहले खाना ने वजीर आजम ताकायची सनाए पर जोर दिया है कि वो तमाम मगवियान को जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए पुरजोर सिफारतकारी करें। और जापानी तफ्तीशकारों ने एक बैन अलावामी हैकिंग ग्रुप के एक मुश्तबा अहम रुकन को हिरासत में लिया है। इस ग्रुप पर दुनिया भर की कई कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले करने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے نیے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُرے شی نا آنو سمی ماسن ninja 博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: काइटो माइक के बहरूप की तारीफ करते हुए कहता है,
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक यहाँ पर जच रहा है।
2: काकोई
0: उम्दा हो लिया।
1: माइक जवाब देता है,
3: उरेशी ना,
0: मुझे खुशी है।
1: माइक रास्ता पूछने के लिए एक राहगीर से मुखातिब होता है।
3: अरो सुमिमासेन,
0: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
3: निंजा हकबुत्सुकन मादे दो इत्तरा ई देसु का?
0: निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
1: राहगीर जवाब देता है,
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस रास्ते पर सीधा जाएं।
2: हकबुत्सुकन वा हिदारी नी अरिमास।
0: म्यूजियम बाई जानिब है।
1: माइक कहता है,
3: वाकरिमास्ता।
0: समझ गया।
3: अरिगातो गोज़ाइमास।
0: बहुत शुक्रिया।
1: काइटो माइक से कहता है,
2: सा इको।
0: ठीक है, चलें।
1: शायद म्यूजियम वहां से ज्यादा दूर नहीं है।
0: जी, स्टेशन से म्यूजियम तक पैदल सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत है, और उस रास्ते पर निंजा से मुतालिक अशिया फरोख्त करने वाली या किराए पर देने वाली कई दुकानें हैं। तो आइए अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: माइक नियाओ ने काकोई
3: उरे शी ना आनो सुमी मासें निंजा 博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
3: निंजा 博物館までどう行ったらいいですか？
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए रास्ता पूछ सकते हैं।
0: निंजा 博物館के मायने है निंजा म्यूजियम, मादे यानी तक, और दो इत्तरा ई रिस्का का मतलब है कैसे जाएंगे। आज का नुक्ता रास्ता पूछने से मुतालिक है। इसके लिए अपनी मंजिल के मकाम के बाद हर्फ जार मादे लगाकर उसके बाद दो इत्तरा ई रिस्का लगाएं। इत्तरा फेल इकू यानी जाना की शर्त या शक्ल है। इस जुमले को इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा।
1: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: अब रास्ता पूछने वाला एक मकालमा सुनिए।
5: すみません、金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: アラビスマカルメキトシリ。
5: すみません、
1: あれすにえ、マフキジェガ。
0: ये अल्फाज किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺तक कैसे जाएंगे?
0: 金閣寺京都के एक मशहूर मंदिर का नाम है। इस मकालमे में वहां तक जाने का रास्ता पूछा जा रहा है।
6: 101 番のバスに乗ってください।
1: 101 नंबर की बस में सवार हूं।
0: 101 番यानी 101 नंबर। बस, बस का जापानी तलफ्फुज़ है, और नोत्ते फेल नोरु यानी सवार होना की ते शक्ल है। नोत्ते कुदासाई के मायने हुए सवार हूं।
1: तो सामेइन अब सुनिए और दोहराइए।
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
0: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
6: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तरा ई देस्का?すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
4: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
0: तो सामीन कोशिश करें।
1: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
7: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
7: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
4: मिगी, हिदारी।
0: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मशक करें।
4: मस्सुगु।
0: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
7: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
8: माइक नियाओ ने काकोई
3: उरेशी ना सुमिमासेन निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
7: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। काल्टो और माइक ने मिया प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
0: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बाद वक्त बचाया जा सकता है।
7: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
0: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
7: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
0: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
7: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है।